107.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और साथ ही 104 FM मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 9 तारीख को दिन है मंगलवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और श्री ए के दास, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमल कुमार दास, मुनपा में उद्घोषक श्री थुपतान ताशी तथा अन्य सहकर्मी के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड्डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Dambulla, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया।

0: खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर

0: आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी

0: और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेशे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए लामा थुप्तन वंगचू और साथियों द्वारा चंद बोध भक्ति गीत।

श्रोताओं, इस बोधभक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना अभी ही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आज आप सुनिए भूपेन हजरिका के आवाजों में चंद आधुनिक बांग्ला गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, पेशे दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आज आप सुनिए दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के बीए 5th सेमेस्टर की छात्रा गुटुप ट्रेमा से एक वार्ता। वार्ता का विषय है स्कूल और कॉलेजों में सपाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं गुटुप ट्रेमा दोरजे खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में बीए 5वीं सत्र की छात्रा हूँ। आज मैं शिक्षा से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी, विद्यालयों और कॉलेजों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा का वास्तविक रूप तब पूरा होता है जब वह विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाए। यही संतुलन सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होता है। खेल कूद, संगीत, वाद विवाद, NSS, NCC आदि गतिविधियाँ विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर सीखने का एक व्यापक संसार प्रदान करती है। इन गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। वे मंच पर बोलना सीखते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं और नेतृत्व की क्षमता भी विकसित करते हैं। इन्हीं अनुभवों से विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की कला सीखते हैं। शिक्षा तभी अर्थपूर्ण बनती है जब विद्यार्थी अपने विचार निडर होकर व्यक्त कर सके। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ विद्यार्थियों की रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानने का भी अवसर देती है। कई बच्चे खेलों में अपनी पहचान बनाते हैं, कुछ संगीत और कला के क्षेत्र में निखरते हैं तो कुछ समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाकर प्रेरणा बनते हैं। कई बार यही रुचियाँ आगे चलकर करियर का मार्ग भी बन जाती है। यदि केवल किताबों के आधार पर शिक्षा दी जाए तो प्रतिभा का विकास सीमित रह जाता है, लेकिन गतिविधियाँ विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करती है। इन गतिविधियों का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेल कूद शरीर को मजबूत बनाता है, वही संगीत, नृत्य और कला मन को शांत और तनाव मुक्त करते हैं। आज के युग में पढ़ाई का दबाव, प्रतिस्पर्धा और उम्मीदें काफी बढ़ गई है। ऐसे में ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों के जीवन में खुशी, ऊर्जा और संतुलन लाती है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ सामाजिक मूल्यों को भी सशक्त बनाती है। विद्यार्थियों में सहयोग, अनुशासन, सहानुभूति और जिम्मेदारियाँ जैसी मानवीय गुण विकसित होते हैं। विशेषकर NSS और NCC जैसी गतिविधियाँ युवाओं में देश सेवा और समाज के प्रति संवेदनशील को मजबूत करती है। यह अनुभव उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने में दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आज के समय में सफल

0: सफलता केवल अंक या डिग्री से तय नहीं होती। संगठनों और संस्थाओं को ऐसे युवा चाहिए जिनमें संवाद कौशल, नेतृत्व, रचनात्मक और समस्या समाधान की क्षमता हो। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ विद्यार्थियों को इन सभी गुणों से समृद्ध बनाती है, जिससे वे भविष्य को चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ या विद्यार्थियों जीवन की एक महत्वपूर्ण आधार है। यह न केवल शिक्षा की जीवंत बनाती है बल्कि व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोजी खंडो गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के बीए फिफ्थ सेमेस्टर की छात्र मुटुप ट्रेमा से एक वार्ता सुना। विषय था स्कूल और कॉलेजों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रोहल और अमित त्रिवेदी की आवाजों में। इस गीत के रचयिता कौशल मुनीर तथा संगीतिया है अमित त्रिवेदी ने।

गुलजार के गीत पर शताब्दी ने फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन की आवाज में एक गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम में अगले गीत सुनते हैं। विशाल शेखर के संगीत पर फिल्म दोस्ताना से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाजों में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है आधुनिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजिरी। कार्यक्रम गीत मंजिरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, प्रीतम के संगीत पर फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में।

तमाशा फिल्म से श्रोता अभी आपने अरिजीत सिंह और अलकैटनी की आवाजों में एक गीत सुना। इस गीत को बोल दिए थे इरशाद कामिल ने तथा संगीत दिया था एआर रमन ने। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, प्रीतम के संगीत पर फिल्म जब है रे मेरे सजल से अरिजीत सिंह की आवाज में।

श्रोता, अभी हमें आनंद दे रहे हैं आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आधुनिक हिंदी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में।

प्रीतम के संगीत पर श्रोताओं आपने फिल्म ट्यूबलाइट से गीत सुना। इस गीत के गायक थे कमल खान, नकस अजीज, देव नेगी और तुषार जोशी। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से विशाल ददलानी और शेफाली अलवरिस की आवाजों में इस गीत को बोल दिए हैं अनविता दत्त ने तथा संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

प्रीतम के संगीत पर श्रोताओं में आपने फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से नीरज श्रीधर और सुजन डी मेलो की आवाजों में एक गीत सुना। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। अर्जित सिंह और नीति मोहन की आवाजों में फिल्म सूर्यवंशी से। इस गीत को बोल दिए है रश्मि विराग ने तथा संगीत से संवारा है जैम एट ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम गीत। फिल्म भूलभुलैया 2 से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के आवाजों में। इस गीत के रचयिता अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए पंडित डीके दातार से बेला वादन। राग है यमन। तबले पे संगत दे रहे हैं नयन घोष।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत पंडित डीके दातार से पहला वादन। राग था यमन। तबले पर संगे तेरे थे नयन घोष। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: पहले मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवाद संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। गजराज कॉर्प्स द्वारा वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रेरणात्मक व्याख्यान तथा हथियार प्रदर्शनी का आयोजन। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तवांग के अंतर्गत BMMU की पहल पर आज तवांग में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के उद्यमी इंडिया पंजीकरण पर एक दिवसीय पंजीकरण शिविर आयोजित। डिजिटल अरुणाचल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने AICOE की स्थापना के लिए NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और पुरुष क्रिकेट में दुमला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवाद संगठनों के फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानयनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमले के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्रप्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग में लाई जा रही आधुनिक सैन्य हथियार प्रणालियों, निगरानी तंत्रों तथा उपकरणों, जिनमें से अनेक स्वदेशी रूप से विकसित हैं, जिन पर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से गजराज कोर द्वारा वन अरुणाचल

0: विशेष बटालियन एनसीसी की संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक प्रेरणात्मक व्याख्यान तथा हथियार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक इन्फेंट्री यूनिट द्वारा राज्य के पापुमपारी जिले के निजुल स्थित नेरिस्ट परिसर में 1APBN एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे और हथियार एवं सैन्य उपकरणों में प्रदर्शनी की आयोजित की गई। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM तवांग के अंतर्गत BMMU की पहल पर आज तवांग के वॉक थ्रू मार्केट स्थित BMMU प्रशिक्षण हॉल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई तथा उद्यमी इंडिया पंजीकरण पर एक दिवसीय पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए BMMU तवांग के डॉक्टर सेवांग तोरजी ने औपचारिक पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिला उद्यमियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने उद्यमियों को सुदृढ़ करने एवं विस्तारित करने का आह्वान किया। डिजिटल अरुणाचल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी AICOE की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। ये MOU IT और कम्युनिकेशन सेक्रेटरी डॉ सोनल स्वरूप की मौजूदगी में स्टेट काउंसिलिंग फॉर IT एंड ई गवर्नेंस SCITEG और NIT अरुणाचल प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर MB अवारे और साथ ही SCITEG के डायरेक्टर सह मेंबर सेक्रेटरी नीलम यापिंताना ने हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान में देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे में कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कुरुकुमे जिले को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही अन्य 4 जिलों पापुमपारे, सियांग, वेस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा है कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और साथ ही 104 एफएम मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तरंग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेशे कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको आज के शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम चेदो निरिम के अंतर्गत सुन पाएंगे मोक्तो गांव के अमा दोजी डेमा और साथियों द्वारा शेदन क्यप्टो गंगलोमा तुंगशा ढोलमा क्यावे शप्तन चंद्रजिक तोयपा और गोबा मुल्लम। आज शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता, इसमें आज आप सुन पाएंगे मोन्युल विद्यानिकेतन तवांग के छात्र देवांग गोगोई से हिंदी में एक कविता। आज शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें श्रोता आज आप सुन पाएंगे फिल्म जब प्यार किसी से होता है से कुमार सानू, लता मंगेशकर, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में चंद नगमे। आज शाम 7:22 पर साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग, इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे 8 जून 2026 को शिक्षा विभाग तवांग द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवांग के सभागार में आयोजित युवा एवं किशोर विद्यार्थियों के लिए व्यापक कैरियर परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचकर पर्यावरण संरक्षण विषय पर श्री संगे नोरबू असिस्टेंट कमिश्नर खिटपेल द्वारा दिए गए भाषण के अंश तथा भारतीय सेना में कैरियर के अवसर और भारतीय सेना में भर्ती होने के प्रक्रिया विषय पर 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग की शिक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मिनी सक्सेना द्वारा दिए गए भाषण के अंश। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम क्वामे तराने, इसमें आज आप सुन पाएंगे फिल्म लक्ष्य से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे सुन पाएंगे। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 10 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना, इसमें कल आप सुन पाएंगे जगजीत सिंह के स्वर में चंद देवभक्ति गीत। कल दोपहर 3 विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत, इसमें कल आप सुन पाएंगे पापोन के आवास में चंद आसमीय गीत। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे दोजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के छात्रा सुक्षी खंडू पेमा से एक वर्ता।

का विषय रहेगा। परीक्षाओं के दौरान तनाव से कैसे निपटें? कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत, इसके अंतर्गत कला आप आनंद ले पाएंगे। फिल्म लुटेरा से मोनाली ठाकुर, दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल दत्तलानी, महाराज फिल्म से मोनाली ठाकुर और फिल्म हिचकी से अरिजीत सिंह की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसके अंतर्गत कला आप आनंद ले पाएंगे। राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा, शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से चिन्मय श्रीपाड़ा और गोपी सुंदर, रावण फिल्म से एकौन, विशाल ददलानी और श्रुति पाठक, पाठशाला फिल्म से लक्की अली, बाग मिल्खा बाग फिल्म से जावेद बशीर, ब्रेक की बात फिल्म से विशाल ददलानी और एलिसा मेंडोसा, बॉडीगार्ड फिल्म से एश किंग और क्लिंटन सेरेजो, कॉकटेल फिल्म से नीरज श्रीधर और कविता सेठ, और फिल्म वेकअप सीज से कविता सेठ के आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:00 कार्यक्रम नमथलेरिम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम नंगछु कलम, शाम 6:00 कार्यक्रम नेरिमसेरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदुन लेरिम, इसके अंतर्गत कला आप सुन पाएंगे। प्रेम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुंसे के सुखश्री सिंह सोमो और साथियों द्वारा शेदुन युनचक सुम्पा गंगलोमा डोलमा खोर्चे क्यावे शप्तन सेमे यंतन मरमे मोल्लम और गोबा मोल्लम। कल शाम 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने, इसके अंतर्गत कला आप सुन पाएंगे। फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से एक देशभक्ति गीत। रात 8:00 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे सुन पाएंगे। रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरुखा अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा

0: कारोबार, व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New Delhi, External Affairs Minister Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has

0: spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. The system is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system.
1: कि लैंड पोर्ट का तेजी से विकास होने के बाद
2: आफ्टर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड पोर्ट नॉट ओनली हैज ट्रेड इंक्रीज्ड बट सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड इट हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इलीगल ट्रेड इनटू लेजिटिमेट ट्रेड इन द विजन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज वेयर माइग्रेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द लैंड पोर्ट्स हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एड्रेसिंग दिस एज वेल
1: लैंड पोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
0: Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Amir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. The central government has given financial support of approximately 1.23 lakh crores rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to the government sources, the financial support has been provided to OMCs is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. Government has proposed an interim budget allocation of 95,692 crore rupees to the states and union territories to ensure a smooth transition from MNREGA to Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBG Ramji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan announced this in a media briefing after holding a virtual meeting with the rural development ministers of the states and UTs in New Delhi. He said that the government has asked states and union territories to make necessary preparations ahead of the implementation of the act. Benchmark domestic equity indices ended over 0.5% up today, snapping two-day losing streak. The Sensex rose 395 points to close at 73,919, while the Nifty jumped 119 points to settle at 23,242. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:10 हो गए हैं. लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता. इसमें आज आप सुनिए मोनिल विद्या निकेतन तवांग के छात्र श्री देवांग गोगोई से हिंदी में एक कविता. कविता का शीर्षक है सबसे पहले.
4: मेरा नाम देवांग गोगोई है. मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ. मेरे विद्यालय का नाम है मोनिल विद्या निकेतन तवांग. मेरे कविता का नाम है सबसे पहले. मेरे कविता का रचनाकार है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन. सबसे पहले आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर. देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले. आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर. देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले. आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डेने फटका कर चहक चहक कर उड़ना फड़फड़. देखूंगा पूरब में फैले बादल पीला लाल सुनहले. धन्यवाद.

श्रोता, अभी आपने कविता पे आधारित कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत मोनी विद्यालय निकेतन टोंग की कक्षा पांचवी के छात्र श्री देवांग गोगोई से हिंदी में एक कविता सुना। कविता का शीर्षक था सबसे पहले। ये आकाशवाणी का टोंग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज आप सुनिए फिल्म जब प्यार किसी से होता है से लता मंगेशकर और उदित नारायण के आवाजों में एक गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, अभी आपने जब प्यार किसी से होता है फिल्म से एक गीत सुना। आइए इसी फिल्म से अब सुनते हैं आनंद बख्शी के गीत पर लता मंगेशकर और कुमार सानू के आवाजों में एक गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:22 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। इसमें पहले आज आप सुनिए 8 जून 2026 को शिक्षा विभाग तवांग द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवांग के सभागार में आयोजित युवा एवं किशोर विद्यार्थियों के लिए व्यापक कैरियर परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचकर पर्यावरण संरक्षण विषय पर श्री संगी नोबू असिस्टेंट कमिश्नर खिटवेल द्वारा दिए गए भाषण के अंश, तत्पश्चात भारतीय सेना में कैरियर के अवसर तथा भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया विषय पर 190 माउंटेन ब्रिगेड टांग की शिक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मिनी सक्सेना द्वारा दिए गए भाषण के अंश।
1: सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू आवर प्रिंसिपल मैडम एंड डीडीएस सर फॉर गिविंग मी दिस opportunity to be in front of you just to share small thoughts which always keeps on breaking me day in and day out, and it's a very pressing issue for all of us that we need to discuss and need to think on it and need to take action. Basically, I want to share my views and concern with you regarding the environment. And just a few days back, on 5th of this month, we celebrated World Environment Day. उसी का सिलसिले में लेके और तवांग का कंटेक्स्ट में लेके थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अभी देखिए, हमारा तवांग इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड मोस्टली द टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम अब्रॉड आल्सो दे हैव स्टार्टेड कमिंग हियर एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन क्वांटम जंप बहुत बढ़ गया। एवरी ईयर टूरिस्ट का जो यहाँ फ्लो भी बढ़ रहा है एंड तवांग काफी सुंदर है एंड वी हैव वेरी लाइक सेक्रेट मॉनेस्ट्री विच इज कंसिडर्ड एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री। And Tawang as such, it's a very beautiful place. We have mountains, valleys and lush green forests even. Unlike other places, yahan par sab kuch hai, yahan ka jal, vayu, sab kuch shudh hai, saaf hai. And above all, yahan ka atmi bhi bahut achha hai. They are very polite, they are very humble, they are very kind. But usi ka saath mein abhi hum dekh raha hai, hamara yahan ka jo environment hai, day by day, is getting destroyed. Matlab kharab ho raha hai, kharab ho raha hai, kharab ho raha hai. एंड उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी प्लास्टिक को देखा जाए तो रैम्पेंट, इनडिस्क्रिमिनेट, फ्लैग्रेंट, ब्लैटेंट, जो भी टर्म यूज करो, वी थ्रो इट, वी लिटर एवरीवेयर। ओनली हम कंसर्न है अपना घर का आंगन को, ऑलवेज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हाउस एंड ओन प्रेमिसेस एंड हमारा बाकी जो सराउंडिंग्स उसको केयर करें, बट वी डोंट बॉदर। जैसे हम अपना घर से लेके किसी खुला मैदान में छोड़ देगा, कहीं पानी में फेंक दिया, कहीं रिवर स्ट्रीम में फेंक दिया, कहीं लेक्स में फेंक दिया, कहीं पहाड़ में लेके छोड़ दिया, वी हैव लीस्ट बोदर। तो इसको देखते हुए काफी हमारा जो अभी का जो डीसी मैडम है नामगेल वांगमो, शी हैज दैट कंसर्न फॉर आवर तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड शी स्टार्टेड अ काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक। तो लास्ट ईयर हम लोग ने पूरा डिस्कस करके विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक आवर WWA Women Welfare Association of Tawang, उनका जो सहयोग के साथ में हम लोग ने एक बाजार में हर जगह में रेड किया था और अपील किया था कि दुकानदार को आपका कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथिन को नहीं देना है। तो कुछ दिन तक चला है एंड देन में अलोंग विद दैट हम लोग ने प्रोग्राम में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा था सेंसिटाइजेशन के लिए प्लास्टिक का क्या हानिकारक है, उसका हाजर्डस और हार्मफुल, और आगे डाउन द लाइन जाके हमारे लिए, हमारा जो मैराइन लाइफ है, हमारा बाकी जो स्पीसीज है फ्लोरा एंड फौना, हाउ इट कैन इंपैक्ट ऑन दोस लाइक लिविंग बींग्स, जो हमारा एक पार्ट है, हमारा इकोसिस्टम, हमारा इकोलॉजी, हमारे इन्वायरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनके बिना हम नहीं जी सकते, तो उसको कैसे इंपैक्ट करता है। एंड सब्सिक्वेंटली ऑर्डर्स भी निकला था आई गेस 24 जून 2025 में स्ट्रिक्टली तवांग में सिंगल यूज प्लास्टिक का कैरी बैग का यूज करना बंद के लिए एक ऑर्डर भी निकाला था। तो कुछ महीना तक चला है एंड वी ऑल्सो बींग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग को करना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ बाकी काम के चलते हम लोग एक्चुअली रेगुलरली वी कुडंट कंडक्ट रेड और चेकिंग। तो बाद में देखा काफी बढ़ गया, जहां तहां कचरा है फेंक दिया, उधर फेंक दिया, नोबडी टेक्स केयर। लेकिन आप देखिए,

0: यहाँ पे जहाँ पर हम लाइफ थ्राइव करते हैं, लाइफ फ्लोरिश करते हैं, कौन सा प्लेनेट है? सिर्फ अर्थ है ना? डू यू एग्री और नॉट?
1: मार्स में और जुपिटर में और सैटर्न में लाइफ फ्लोरिश करते हैं क्या? नहीं करता ना. लाइफ थ्राइव करते हैं क्या? नहीं करता ना. मदर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ फ्लोरिशेस, वेयर वी सस्टेन, वेयर वी एग्जिस्ट एंड वेयर वी विल थ्राइव इन डेज टू कम. लेकिन अगर हम इसी प्लेनेट अर्थ को अगर हम एवरी डे हम इसको हार्म करते रहेगा और इसको डिग्रेड करते रहेगा, आपको क्या लगता है कि ये आगे जाके हमको सस्टेन कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. जैसा भी आपका एक माँ है, अगर माँ को आप जितना तकलीफ जगा देगा, अल्टीमेटली आपका माँ एक दिन आपको सरेंडर कर देगा, बोलेगा नहीं अभी बस बेटा, बस अभी हो गया, बस बेटी, बस अभी मैं थक चुका हूँ. अगर ये हमारा प्लेनेट अर्थ, हमारा एनवायरमेंट, इफ शी हैड ए वॉइस टू से, देन शी वुड हैव सेड कि बस बेटा बस माफ कर दो, यार भी नहीं सके और हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके. तो सेम थिंग इफ यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस, टाइम हैज कम टू थिंक ओवर इट. अगर अभी नहीं तो बाद में कभी नहीं. अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा इश्यूज है एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया है, हर चीज आदमी के पास अवेलेबल है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल आजकल फिंगर टिप्स में. आपका गूगल हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे क्लाउड हो, किसी भी पूछो, आप जो भी पूछो, एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप, आई मीन इन योर स्मार्टफोन. एंड एवरीबॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट नाउडेज. कोई भी बुद्धू नहीं, कोई भी अनजान नहीं, कोई भी इनोसेंस नहीं, सब सेंसिबल है. लेकिन इसी सेंसिबल का दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी हैव बिकम इनसेन. इनसेन हो चुका है हम लोग, सेनिटी खत्म हो गया, इनसेन हो गया. तो मैं एक्चुअली यहाँ पर आप लोग को बीच में क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर है, हमारा वी कॉल यू आर्किटेक्ट, हमारा फ्यूचर है. बोलता ना नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर, सिर्फ हम बोलते रहते हैं, लेकिन आगे जाके जस्ट लाइक हमारा इडी साहब ने यहाँ पर बताया कि आप आगे जाके यहाँ पर खड़ा होगा आज दिन, हमारे एसपी साहब ने इतना अच्छा से ड्राफ्ट को लेके ये बताया. तो ड्राफ्ट के साथ में हमारा एनवायरमेंट को बचाना और प्लास्टिक का यूज को कम करना, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और हमारे लिए कंसर्न है. एंड वी नीड टू एक्ट ऑन इट प्रोएक्टिवली. अगर अभी से अगर नहीं करेगा, आपने सुना होगा प्लास्टिक वगैरह के आगे जाके नदी में जाता है, नहीं करता मैंने वगैरह आगे जाके मैरिन लाइफ, जो मैरिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फीड करते हैं, जो हम लोग खाते हैं आगे जाके मच्छी वगैरह, उसमें वो केमिकल प्लास्टिक का माइक्रोन्स लेवल में आ जाता है और हमारे पेट में जाके हमको तरह तरह का बीमार हो सकता है. सेकेंडली अगर आप ऊपर जाएगा, पहाड़ों में जाएगा, बोतल को लेकर प्लास्टिक को इंडस्ट्री फेंकेगा, वो जाके पानी में जाके पानी कंटेमिनेट हो, फिर हम जाके तरह तरह हम सोचते हैं कि प्लास्टिक को फेंक देगा वो मेरा काम खत्म, लेकिन आगे जाके वो जाके हमारा पूरा सोयल में जाएगा, सोयल इरोजन से लेके सोयल का फर्टिलिटी को पूरा खत्म करके लास्ट में जाके आपका जो प्रोडक्टिविटी को खत्म करेगा. तो प्रोडक्टिविटी खत्म होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या होगा, हमारा स्केसिटी होगा, फूड स्केसिटी होगा, फेमिन वगैरह हो सकता है. तो उसका अगर रेमिफिकेशन को अगर देखा जाए तो बहुत वाइड है. तो इसको देखते हुए हम सोचते हैं कि आप जाके एक प्लास्टिक के अगेंस्ट में, जो क्रूसेड अगेंस्ट प्लास्टिक है, उसके अगेंस्ट में आप एम्बेसडर बन सकते हैं. अगर अभी हम लोग तो वी फेल, हम लोग ने फेल हो चुका है. एक्चुअली जो गंदगी दिखाई दे रहा है आप लोगों ने नहीं बनाया, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ने बनाया. हम जब छोटा था मेरा, हम लोग का माँ भी वेरी हार्डली वी कुड सी यूजिंग कैरिंग कैरी बैग, उस वक्त अलग थैला हुआ करता था, उसमें ले जाता है, ये हमारा जो ठोंगा जो कागज का हुआ करता है. लेकिन हमारा जो पूर्वजों ने, हमारा मेरे पेरेंट्स ने शायद इन्वायरमेंट को इतना डैमेज नहीं किया जितना हम लोग ने डैमेज किया, हम लोग ने डैमेज किया. तो उनका समय में प्लास्टिक यूज नहीं होता, हम लोग का समय क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्ट चाहते हैं, हम चाहता नहीं कि भूखना चाहता नहीं, हम बैग लेना नहीं चाहते, दुकान में जाके सिंपली डिमांड करते हैं कि बैग दे दो. अरे आप घर से थैला लेके जाओ ना, हो जाएगा ना, उसमें थैला में आ जाएगा. तो एक इंडिविजुअल लेवल अगर आप सब में से अगर प्रण ले लेगा, अगर ये प्लेस ले लेगा कि एक एक बच्चे अपना घर में जाके माँ पिता जी को बताएगा कि नहीं करना है, ये जाके आगे हमारा फ्यूचर के लिए खराब है, हमारा पूरा एनवायरमेंट को खत्म करेगा, हमारे जेनरेशन को ये हार्म करेगा, आने वाला कई पीढ़ी को इंपैक्ट करेगा, अगर ये चीज अगर आप मन में ठान लेगा, अगर आप कन्विक्शन से इसको लेके, मैसेज को लेके अगर माँ पिता जी को बताएगा, इफ यू डिस्कस इवन विद देम ऑल्सो और आगे जाके एक्सप्लोर करें क्या हो सकता है, इवन यू कैन गूगल क्या हो सकता है प्लास्टिक से क्या हानि कर रहे, तो आप लोग सब पता चल जाएगा. तो ये अगर मैसेज को लेके अगर घर घर में अगर आप एक एम्बेसडर के रूप में, एम्बेसडर ऑफ क्रूसेड अगेंस्ट यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, अगर

0: अगर एक एक बच्चे आज यहां से एक एम्बेसडर बन के निकल के आएगा तो मैं समझता हूं कि पूरा मुझे बिलीव एंड आई होप आई एम टोटली अपबीट एंड आई एम सेंग्रीन दैट इट विल कम दैट टाउन विल बी फ्री फ्रॉम प्लास्टिक. लेकिन ये सब आपको टन देना पड़ेगा. हम अकेला से नहीं होगा, हमारा एडी साहब अकेला से, हमारा एसपी साहब से नहीं होगा, हम सब मिलकर. सिर्फ अर्बन वाला करेगा, अर्बन डिपार्टमेंट करेगा अर्बन का काम, और हम लोग सीरियस लोग हैं. हम लोग यहाँ पर जितना भी मैडम्स है, टीचर्स है, ऑफिसर्स है, हम सबका भी दायित्व बन रहे हैं. हमने बहुत कम देखा है कि हमारा ऑफिसर, हमारा हम लोग, मैं खुद भी हूँ, हमारा जो एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट सर्विस सरकारी कर्मचारी है, हम भी कितना केयर करते हैं, कितना इनिशिएटिव ले गए, बहुत कम. लेकिन अगर अगर हम अभी नहीं लेगा तो ए डे विल कम जब ये बच्चा लोग बड़ा होके है, जब हम लोग एज होगा, बोलेगा दे वेयर द वंस हु स्पॉइल हु डैमेज आवर ओनली प्लेनेट होम वेयर लाइफ कुड थ्राइव. अभी लाइफ नहीं, एक्सटिंक्शन में आ गया, एक्सटिंक्शन क्राइसिस में आ गया. तो ये जो बोलने का मौका हम लोग को नहीं देना है. हमारा जो जितना भी यहाँ पर जो टीचर्स है, मैडम्स है, सर्स है, ऑफिसर, इवन मी, तो ये मौका जो आप लोग बच्चा लोग को आप लोग मौका देना नहीं चाहते हैं, इसलिए फ्रॉम डे वन राइट फ्रॉम नाउ अगर आप ये मैसेज को लेके सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग नहीं देना है. अभी दुकान वाला क्या बोलता है, दुकान वाला ये बोलता है कि डिमांड करता है. तो मैं आप सबसे, जितना भी आप स्टूडेंट्स है, आज से आप लोग प्लास्टिक के लिए डिमांड करेगा नहीं करेगा ना? Do you want to keep our town clean and safe? Yes or no? Okay, तो आज आप अपने सपने यहाँ एक टन लिया. देखो आज से आप केरी बैग डिमांड नहीं करेगा, पॉलीथिन बैग डिमांड नहीं करेगा, और कम से कम कोशिश कीजिए कि हम भी प्लास्टिक को कम से कम यूज करेगा. आप दुकान में जाते हैं, रैपर्स में आते हैं, अंकल जी आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, कितना इसका आपको हेल्थ में डैमेज करते हैं वो आपको मालूम होगा. तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सकेगा जंक फूड को मत खाइए, प्लास्टिक का पैक, जितना हो सके फ्रेश फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, प्लास्टिक में जितना भी है कवर पैकिंग आता है उसको कम से कम यूज कीजिए. जितना अगर हम कम यूज करेगा उतना ही हमारा सराउंड में प्लास्टिक कम आएगा, उतना ही हमारा मदर अर्थ को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं. अगर हम अभी से ये नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग यहाँ पर रहने नहीं सकेगा, एंड इट विल बी टू हॉट, गंदगी होगा, टू मच पॉल्यूटेड होगा और अनसेफ होगा रहने के लिए. तो हम नहीं चाहते कि हमारा जेनरेशन, आप जैसे बच्चे लोग जो आगे इतना एक प्रोमिसिंग, इतना आगे जाके बहुत कुछ करने वाला आपके देश के लिए, अपना सोसाइटी के लिए, तो आपका जो फ्यूचर, आपका जो एनवायरमेंट जो आपके लिए है उसको हम डैमेज नहीं करना चाहते. तो मैं वंस अगेन आप सभी बच्चों से, आप लोग यहाँ से एम्बेसडर बन के जाइए और महाविद्यालय के सर बताइए कि आप भी दुकान में जाके बिल्कुल कैरी बैग डिमांड नहीं करना है. ये तवांग को साफ रखना, सेफ रखना हम सब का कर्तव्य है. अगर तवांग का हम साफ नहीं रखेगा, सेफ नहीं रखेगा, तो एक दिन मदर अर्थ भी गुस्सा होकर उसका रात, उसका कहर हमारे ऊपर बरसेगा और हम लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा. अभी आपको इतना रियलाइज नहीं करेगा, बट इन डाउन द लाइन आफ्टर 10 ईयर्स, जब आप लोग हम लोग का जगह में होगा 10 ईयर्स, तो उस समय एक बात छेड़ा था उन्होंने, हमने नहीं छेड़ा, सबने छेड़ा है, लेकिन कान में किसी ने ध्यान में नहीं लिया. तो ये बात छेड़ा था, आज हम लोग के लिए कितना हकीकत साबित हो रहा है आपको रियलाइज होगा. तो बेटर लेट देन नेवर बोलता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, अभी से शुरू करना है, लेट नहीं रखना है. अगर अभी से नीपिंग एट द बट नहीं करेगा तो हमारे लिए समय बहुत कम है. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मैसेज को लेके बोलते ना, प्रोवोक थॉट्स इंस्पायर एक्शन बोलते हैं, तो मैंने आपके दिल में एक थॉट पैदा कर दिया, अभी वो एक्शन को आपको करना है. With these few words, once again, I thank you for all of you and for giving me this time to share my views and concerns, especially of Tawang और आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले future के लिए. Thank you very much.
1: श्रोता, अभी आपने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचकर पर्यावरण संरक्षण विषय पर श्री सांगे नोगु असिस्टेंट कमिश्नर खिटवेल द्वारा दिए गए भाषण के अंश सुने. आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना में कैरियर के अवसर तथा भारतीय सेना में भर्ती होने के प्रक्रिया विषय पर 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग की शिक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मिनी सक्सेना द्वारा दिए गए भाषण के अंश.
2: All lovely students here. I am representing Indian Army today. I am an Indian Army personnel. So I have come here to tell you about Indian Army and how you can be part of Indian Army. We have so many career options. You are free to choose whatever. But I am here to tell you some brief facts about Indian Army and how I can help you to join Indian Army.

मम्मी ओके इस पिक्चर में आप किसी को पहचानते हैं? व्हाट ऑल डिड यू सी? यू कैन जस्ट से टैंक्स, एडवेंचर एक्टिविटीज या पीपल इन यूनिफॉर्म, पीपल डूइंग सम अदर एक्टिविटीज. सो दिस इज ऑल वी डू. ठीक है, आई हैव रिडन अ टैंक, आई हैव फायर्ड अ मिसाइल, आई हैव डन एवरी एडवेंचर एक्टिविटी विच यू कैन जस्ट थिंक ऑफ. यू नो आई हैव क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2012. यू कैन सी दैट. आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ. नो नो नो, पॉइंट इज नॉट दिस. दिस इज नॉट माई पॉइंट. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम नॉट बोस्टिंग कि मैं ये करती हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि आई हैव डन इट. एनीबडी सिटिंग अमंगस्ट यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके, दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज. इज नॉट ओनली दैट वी वर्क, we do adventure, we do what you can just think of, we do that. Okay, we do lots of activities jo aap kabhi soch bhi nahi sakte hoge, wo hum karte hain. So jo bhi pictures humne dekhi, most of things everybody does, and you can also do if you become part of Indian Army. So I can just tell you in brief how you can join. तो अभी जो छोटे बच्चे हैं, जो 10th onwards वाले बच्चे हैं, वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. मतलब वो समझेंगे कि उनको आगे क्या सोचना है, क्योंकि 10th क्लास के बाद हम सभी क्या करते हैं, करियर के बारे में सोचने लगते हैं, है ना. तो छोटे बच्चे जस्ट देखेंगे, वो सोच सकते हैं कि हम एनसीसी लें. जो 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स है, वो बच्चे एनसीसी के थ्रू अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में. और जो 10th क्लास के बाद वाले बच्चे 11th एंड 12th, दे कैन रियली थिंक ऑफ अपियरिंग फॉर दी examination. Okay, so we'll start with that. Okay, so there are two ways you can join Indian Army. First is 10+2 entry level. 10+2 is for NDA, National Defence Academy. Or if there is technical entry scheme also after 10+2, you can join. Okay, and after this, second is graduate level entry. Now graduate level entry, you have two type of commission. Two type of commission. You understand what is commission? When you join services, you get a commission. President of India appoints you. Okay, so we get commission. Some people get it for 20 years, that is permanent commission. Some people get it for 5 years, not 10+4. Not 5 years, this is 10+4. Some people get commission for 10 years. But both of them get commission from President of India, right? So two types of. You can serve army for 10 years or you can serve army for 20 years and more. As per your age criteria. Okay, then you have CAPF, Central Armed Police Forces, and TA, Territorial Army. Also you can join. Okay, uske baad hamara last. How many of you have heard about Agnipath scheme? Suna hai aapne? Okay, I'll tell you about it, not too worried. तो मैंने अभी आपको बताया कि आप आर्मी में 10+2 करके आ सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन एनडीए. अर्लियर आई थिंक 5 इयर्स बैक एनडीए वाज ओनली यूज्ड टू बी फॉर बॉयज. नाउ गर्ल्स कैन ज्वाइन टू. गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन एनडीए. द एलिजिबल क्राइटेरिया इज +2 इन एनी स्ट्रीम. ओके, योर मैथ्स, योर इंग्लिश, योर कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग शुड बी गुड एंड एनी स्ट्रीम कैन अपीयर. आप किसी भी स्ट्रीम में होंगे, आप एनडीए के लिए अपीयर कर सकते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. 3 इयर्स यू विल बी इन नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे. आई वाज इंस्ट्रक्टर देयर. आई हैव टॉट. आप जैसे छोटे बच्चे ही वहां पे आते हैं और वो ऑफिसर्स बनते हैं. ओके, सो उसके बाद 10+2 के बाद आप आ सकते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, विच इज ऑल्सो 10+2. ओके, तो +2 के बाद भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप टेक्निकल एंट्री है तो भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. बट फॉर टेक्निकल एंट्री यू हैव टू बी अ पीसीएम, यानी कि साइंस, मतलब 12th में साइंस होना बहुत मैंडेटरी है. ओके ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन, यू नो व्हाट इज ग्रेजुएशन ऑल ऑफ यू? आफ्टर +2 यू ज्वाइन सम कॉलेज, यू नो यू डू सम ग्रेजुएट. अंडर ग्रेजुएट कहते हैं ना जिसको. तो आफ्टर 3 इयर्स, 4 इयर्स, जो भी कॉलेज के क्राइटेरिया है, 4 साल बाद भी आप CDS. +2 के बाद क्या था? एनडीए. आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन. दिस इज अ रिटन एग्जामिनेशन. यू अपीयर एंड देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन. बट देन यू विल नॉट ज्वाइन एनडीए, यू विल ज्वाइन IMA और OTA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई. गया एंड वन मोर इज देयर. ओके, सो दोनों तरह से. +2 के बाद जो बच्चे +2 के बाद नहीं कर सकते, वो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं. ओके, when you opt for BTech or something, after BTech also college selection schemes are there. Aap seedhe directly without any written examination bhi SSB clear kar sakte hai. Matlab army ka exam interview face kar sakte hai, usme aapko written examination nahi dena.
पर अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट है तो आपको सीबीएस रिटर्न एग्जाम भी अपील

0: क्लियर करना होता है. ओके देन टीजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आई टोल्ड यू एसएससी ऑफिसर शॉर्ट कमीशन ऑफिसर, यू कैन अप्लाई फॉर दैट. सो मेनली मोटा मोटा हम यहाँ पे दो ही एंट्री अभी बताएंगे अब आपको. फर्स्ट इज एनडीए, ओके, दैट इज आफ्टर 12+2 एंड दैट वन आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट इज सीडीएस. ओके, टू एंट्रीज एंड वन आफ्टर. इफ यू आर अ टेक्निकल ग्रेजुएट देन यू डोंट हैव टू अपियर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, यू आर डायरेक्टली सिलेक्टेड. एंड द लास्ट एंट्री आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट अबाउट इज एनसीसी एंट्री. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन एनसीसी हियर, एनीबडी? यस, वेरी नाइस. एनसीसी स्टूडेंट्स दे हैव अ सम काइंड ऑफ मेरिट एंड कोटा इन द सीडीएस, सो आप लोग को रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है. जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं दे डोंट हैव टू गिव द रिटन एग्जामिनेशन, दे कैन डायरेक्टली गो एंड अपियर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. यू डोंट हैव टू राइट एनी एग्जामिनेशन, नो पेपर. ओके, अग्निपथ स्कीम, दिस इज अ न्यू स्कीम विच इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक इन 2022. द स्कीम वॉज लॉन्च फॉर 4 years एक्सपोजर ऑफ द सोल्जर्स इन आर्मी. ओके, उसमें वुमेन भी आती है, मेन भी आते हैं. 4 साल वो आर्मी में सर्व करते हैं, उसके बाद 4 साल के बाद दे गेट एक्सपीरियंस, दे गेट स्किल सर्टिफिकेट और वो बाहर भी जा सकते हैं. एंड आई थिंक 25% स्टे इन आर्मी, 75% कैन लीव आर्मी एंड दे कैन गो आउटसाइड एंड ज्वाइन डिफरेंट पैरामिलिट्री सर्विसेज, बैंड्स एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. व्हाट इज द रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया फॉर अग्निपथ? यू हैव टू बी 10th इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अग्निपथ स्कीम. उसके बाद व्हाट इज द एज क्राइटेरिया? 17.5. एंड ट्रेनिंग क्या है? 6 months टू 3.5 years. आफ्टर 3.5 years ही कैन डिसाइड टू स्टे और ही कैन लीव. सो फ्रॉम माय साइड दिस इज इट. आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो करियर ऑप्शंस इन इंडियन आर्मी एंड यू कैन अप्रोच अस और एनीबॉडी, वी विल बी देयर टू हेल्प यू. थैंक यू.
1: श्रोता, अभी आपने साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग के अंतर्गत पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचकर पर्यावरण संरक्षण विषय पर श्री संगीनोवो असिस्टेंट कमिश्नर किटपिल द्वारा दिए गए भाषण के अंश सुने और भारतीय सेना में कैरियर के अवसर तथा भारतीय सेना में भर्ती होने के प्रक्रिया विषय पर 190 माउंटेन ब्रिगेड टॉम की शिक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मीनू सक्सेना द्वारा दिए गए भाषण के अंश सुने. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:45 होने वाले हैं. हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर. कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में संभावित ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्लॉफ को लेकर प्रशासन ने तैयारी और सतर्कता बढ़ा दी है। क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को संबंध में वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। तवांग जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज के प्राप्त जानकारी के आधार पर अलर्ट जारी किया है। संस्थान ने कांगवी ग्लेशियर के आसपास तेजी से हो रहे हिमनद क्षरण यानी ग्लेशियर रिट्रीट तथा अस्थिर भूभाग के कारण ग्लॉफ की संभावना जताई है। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों, भारतीय सेना, ITBP तथा BRO को अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक तैयारी रखने और आपातकालीन सामग्री उपलब्ध रखने की सलाह दी है। अधिकारियों ने विशेष रूप से मोगोचू और तवांगचू नदियों के किनारे स्थित निचले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। अधिकारियों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में ग्लॉफ जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक गंभीर खतरा बना हुआ है। सरकार के विदेश राज्य एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने आज लोअर सुबनसिरी जिले का अपना दौरा संपन्न किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आजीविका को समर्थन और सशक्त बनाना था। दौरे के तहत मंत्री ने बहुप्रतीक्षित जीरो हैंडलूम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इसके पूर्ण होने पर ये केंद्र स्थानीय बुनकरों को अपने विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने और विपणन करने के लिए प्रत्यक्ष मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा मंत्री ने समग्र हस्तक्षेप क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत स्थानीय कारीगरों को विशिष्ट टूल किट भी वितरित किए। मंत्री का अगला दौरा क्रादादी जिले के पालिन में निर्धारित है। अरुणाचल प्रदेश

0: एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए कल दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज ईटानगर स्थित विधानसभा सचिवालय में की गई है। भाजपा उम्मीदवार ताई तागक द्वारा दाखिल दो नामांकन पत्रों की जांच की गई और दोनों को ही वैध पाया गया। इसके बाद उन्हें राज्यसभा निर्वाचन के लिए विधिवत नामांकित उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। जांच प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती तादार मीना तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लोंगमन रोंगरांग द्वारा संपन्न किया गया। ये प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पर्यवेक्षक पवन कुमार सेन तथा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी लेकिन कोयो की निगरानी में उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने ईटानगर स्थित निर्वाचन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा है कि SIR के निर्धारण समय सीमा के अनुसार तैयारी, प्रशिक्षण, मुद्रण कार्य तथा बूथ स्तरीय अधिकारियों BLOs द्वारा घर घर जाकर सत्यापन का कार्य 1 जुलाई से शुरू होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितम्बर 2026 को किया जाएगा। श्री सेन ने बताया है कि वर्तमान में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 8,87,000 से अधिक है। रविवार को इलेक्टोरल फॉर्म्स EFs की कुल 50.23% छपाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि वेस्ट सियांग, अपर सियांग, लेपारादा और शियोमी जिले में EFs की 100% छपाई पूरी हो चुकी है। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ASRLM तवांग के अंतर्गत BMMU की पहल पर आज तवांग के वॉक थ्रू मार्केट स्थित BMMU प्रशिक्षण हॉल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI तथा उद्यमी इंडियन पंजीकरण पर एक दिवसीय पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महिला स्वयं सहायता समूहों, मदर्स किचन तथा स्थानीय महिला उद्यमियों सहित कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई उद्यमियों को मौके पर ही सफलतापूर्वक पंजीकरण भी कराया गया है। निरियल स्थित नेरिस्ट में वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन NCC के 10 दिवसीय कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम CATC-37 का कल संपन्न होगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारतीय सेना के गजराज कौर द्वारा प्रेरणात्मक व्याख्यान तथा हथियार प्रदर्शनी रहा। उपकरण प्रदर्शनी में SIG SOR 716 राइफल, साको TRG-42 स्नाइपर, नेविक LMG एंड एडवांस थर्मल सर्वेलेंस सिस्टम शामिल किए गए थे। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के तवांग और कुरुंग कुमेऊं जिले को छोड़कर सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही अन्य 4 जिलों पापुमपारे, सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिवांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित JPC कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला परिषद अध्यक्ष JPC श्रीमती ज्योति सिकोंग की अध्यक्षता में समन्वय एवं संवाद बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय प्रिया बादू। Authorities in Arunachal Pradesh Tawang district have stepped up preparedness measures amid concerns over a possible glacial lake outburst flood in the Mago Chu Basin following warnings from scientific experts about climate-related risks in the region. The Tawang District Disaster Management Department issued an alert after receiving inputs from the Center for Earth Science and Himalayan Studies, which flagged the possibility of a clough linked to rapid glacier retreat and unstable terrain around the Khangri Glacier. Alerts issued to residents, Indian Army, ITBP and BRO advising preparedness and emergency supplies. Official urge vigilance and following advisories, especially in low-lying areas along Mago Chu and Tawang Chu rivers, as GLOF poses a serious climate-related threat in the Himalayan region. Pavitra Margarita, the Minister of State for External Affairs and Textile Government of India, wrapped up visit to Lower Subansiri district today. At the center of the visit was a clear mission to support and empower local livelihoods. Mr. Margarita laid the foundation stone for the highly anticipated Zero Handloom Marketing Complex. Once complete, this dedicated hub will offer local weavers a direct gateway to showcase and sell their unique creations to a global audience. The minister also handed out specialized toolkits to local artisans under the Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme. Minister Margarita's next tour destination is Palin Kradadi district. The scrutiny of nomination papers filed for the lone Rajya Sabha seat from Arunachal Pradesh was conducted today at Legislative Assembly Secretariat, Itanagar. The two nomination papers filed by Tai Tagak, BJP candidate, was scrutinized and found to be valid.

श्रोता, अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने के अंतर्गत फिल्म लक्ष्य से एक देशभक्ति गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। दो जासूस फिल्म से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। इस गीत के रचयिता हसरत जयपुरी तथा संगीत दिया है रविन्द्र जैन ने। गीत की फरमाइश की है मुक्तो गांव से पेमा, दोर्जी, मुनकी, दवा और क्रूमोने।

कार्यक्रम मैगली गीत की फरमाइश की है मंडलिंग टाउन से तेंजिन डॉकर सेग्रिपा ने। इनकी गीत की फरमाइश है फिल्म सेरा से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हस्तर जयपुरी तथा संगीत से सवारा है राम लाल ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है देर पतान गुजरात से धीरज वी रबरी ने। इनकी फरमाइश का गीत है मुकद्दर का सिकंदर से। इस गीत के गायक है किशोर कुमार। इस गीत को बोल दिया है अनजान ने तथा संगीत से सवारा है कल्याण जी अनंत जी ने।

आनंद बख्शी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के आवाजों में आए सुनते हैं फिल्म चरस से एक गीत। इस गीत को बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत की फरमाइश की है पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से महर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा ने।

आइए श्रोता, आप सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत, फिल्म वो कौन थी से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के आवाजों में। इस गीत के रचयिता राजा मेहंदी अली खान तथा संगीत दिया है मदन मोहन ने। गीत की फरमाइश की है मेहरनगर उमरखेत महाराष्ट्र से अभिजीत गुहानकर राही, सरिता गुहानकर, प्रणीता सिद्धार्थ गुहानकर, अर्जुन गुहानकर और आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गुहानकर, सुमित गुहानकर, दोहनी गुहानकर परी और प्रिंस एकांश गुहानकर।

हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारे यहाँ रोमानी और यादवारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वत्सल फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वत्सल जरूर करें।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 मिनट होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 9 रात्रि 9 बजे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट और हर मैदान की पूरी खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत ए ने एक दिवसीय क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हुआ और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं खेल के मैदान की खबरों के साथ, जहां श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। सुनते हैं इस मैच पर हमारी ये रिपोर्ट।
1: भारत ए टीम ने श्रीलंका ए पर जीत के साथ त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत की है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड ने 114 गेंद पर 101 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका को निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों ने 93 रन जोड़े। अविष्का 45 रन और निरोशन 99 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मेजबान टीम का विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कप्तान अरागिचे ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, उन्होंने 74 रन की पारी खेली। कप्तान का विकेट गिरते ही श्रीलंकाई टीम 269 रन पर सिमट गई। आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, अर्शद खान और विपराज निगम ने दो दो विकेट लिए। ऋतुराज गायकवाड को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जहां एक तरफ युवा खिलाड़ियों ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की, और आज कार्यक्रम में बात होगी ऐसे एक और युवा खिलाड़ी मानव सुथार की, जिन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना

0: डेब्यू करते हुए एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट लेकर ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बने बल्कि कई रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त किया। सुनिए 23 वर्षीय युवा मानव सुथार पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
1: Top edge and it's taken. A wicket in the first over. You can't ask for anything better. Football is all he needs.
2: अपने इंटरनेशनल करियर के पहले ही ओवर में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल मलिक का विकेट लेकर भारत के इस डेब्यूटेंट मानव सुथार ने अपने मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस विकेट के बाद मानव ने मानो विकेट की झड़ी ही लगा दी और मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके सुथार की फिरकी के आगे अफगानिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम अपनी पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई और भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दिया। मेहमान टीम की दूसरी पारी में भी सुथार ने एक विकेट झटका। मानव सुथार पिछले 35 सालों में भारत के लिए डेब्यू टेस्ट की एक पारी में 6 विकेट हॉल लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने किया था।
3: First of many, Manav Sutar, 6-for-33 in 22 overs. Second best figures by an Indian on debut.
2: मानव सुथार डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर मानव सुथार ने स्वीकार किया कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने पर मानव ने कहा कि ये उनके लिए बेहद खास एहसास था। मानव की गेंदबाजी परफॉर्मेंस पर भारतीय स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: वेरी वेल बोल्ड मानव, आई थिंक फैबुलस एफर्ट On debut, picking up 5 wickets is always something special. It's very well done. I think the effort you put in with all your hard work and practice.
2: सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, मानव ने बल्लेबाजी में बखूबी हाथ आजमाया और अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 41 गेंद का सामना करते हुए 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। मानव सुथार ने इस मैच से मिली सीख के बारे में कहा कि सबसे बड़ा सबक ये है कि निरंतरता ही सब कुछ है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो मानव ने भी माना कि टेस्ट मैच की निरंतरता ही सब कुछ है और निरंतरता से इतर इस तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हो चुका है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई कर रही हैं। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों ने आज खेले गए मुकाबलों में बाजी मारी और किन अहम खिलाड़ियों पर कल नजर रहेगी।
5: आज खेले गए मुकाबलों की बात की जाए तो पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्सकरुनन की जोड़ी ने पहले दौर में जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर्स फाइनल में प्रवेश किया, जबकि अच्युता दत्त राव और अर्जुन रेड्डी पोषणा की जोड़ी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबलों में सनीथ दयानंद ने पहले स्थानीय खिलाड़ी कारोनो को 21-17, 21-15 से आसानी से हराया और फिर मलेशिया के मिंग होंग लिम 21-9, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की की। वहीं मनराज सिंह मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में असफल रहे। प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग के मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे, जिसमें भारत को अपने स्टार खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु, युवा मालविका बंसोड, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशरानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हिमनाथ के साथ भारत की चुनौती रखेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय, किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपला और तनिषा क्रेस्टो को भारत से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी। उनके साथ ही ध्रुव रावत और मनीषा कीर तथा मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी भी भारत की चुनौती रखेगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात हॉकी की, जहां अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों को आज खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। श्री मांडविया ने पुरुष टीम को 61,50,000 रुपए और महिला टीम को 21,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि सौंपी।
6: ककामिगाहरा में शुक्रवार को खेले गए फाइनल में कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ कप्तान स्वीटी कुजूर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का

0: हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्री मांडविया ने बताया कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत को एक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे पहले स्वदेश पहुंचने पर अंडर 18 पुरुष कप्तान केतन कुशवाहा ने टीम के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: यही कहना चाहूंगा अपनी टीम को कि अपने कोचेस को थैंक यू कि इतना सपोर्ट, इतनी ट्रेनिंग हम लोग को मिली गई है और हम लोग वहाँ से आए जीत कर, तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि इतना एशिया कप जीतना और एक दूसरे को सपोर्ट करना।
0: टीम के कोच और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अवसर भारतीय हॉकी टीम को और मजबूत बनाएंगे।
2: 18 जो ग्रास रूट लेवल पे और उसके बाद सब जूनियर बच्चों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम इस तरीके के कैंप्स अगर कंटिन्यू करेंगे सारी स्पोर्ट्स में, तो मैं कहूंगा कि सभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग है तो ऊपर लेवल की जो इंटरनेशनल हॉकी है उसको मैनेज करना इजी है।
0: श्री मांडविया ने पुरुष और महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर आशीष तानीपूर्ति और नौशीन नाज तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आयुष राजक को भी सम्मानित किया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
3: और अब बात विश्व योगासन चैंपियनशिप की, जिसका कल गुजरात के अहमदाबाद में समापन हो गया। सुनिए इस आयोजन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
4: भारतीय खिलाड़ियों ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि क्यों भारत को योग की महाशक्ति कहा जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने योगा मैट पर अपने लचीलेपन और शारीरिक दक्षता का ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि पदकों की कतार सी लग गई। भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 114 पदक हासिल किए। जापान 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहली बार आयोजित इस विश्व योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिना ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत योग के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है।
5: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो सारे एथलीट हैं बहुत ही अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं और बहुत सारे मेडल्स उनको भी गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में हमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। बट वैसे अगर योग की लैंग्वेज में बोलूं तो वसुदेव कुटुंबकम और जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक विश्वगुरु बनकर सामने आ रहा है।
4: विश्व और भारत योगासन के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि योगासन ने बहुराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अपना शंखनाद कर दिया है और अब ये खेल ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जैसे आयोजनों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
6: आने वाला 2036 के लिए जब हमने बिड की है ओलंपिक में और 2030 के लिए हमने कॉमनवेल्थ गेम के लिए बिड की है, वो भी गुजरात में होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में पहली बार विश्व पटल पर योगासन ने अपना शंखनाद अहमदाबाद से कर दिया है।
4: इस आयोजन से पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी योगासन को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
7: भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासन को भी स्थान दिया जाएगा।
4: तो ये कहा जा सकता है कि योगासन अब खेल मैदान और पार्कों की योग मैट से निकलकर विश्व के खेल पटल पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
3: और अब अंत में बात करते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
8: 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व विजेता बनने के बाद अब हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू है तैयार। इंग्लैंड और वेल्स में अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए जोश, जज्बे और अनुभव के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम है तैयार। खत्म करने को 17 साल का इंतजार, तो अब दुनिया देखेगी दम। हर मैदान जीतने को तैयार है हम।
3: और आज बात करते हैं इस कड़ी में उन 5 खिलाड़ियों की, जिन पर इस टीम की पूरी नजरें रहने वाली हैं।
9: सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का, जिनका बल्ला इस विश्व कप में काफी मायने रखेगा। मंधाना अगर टीम को अच्छी शुरुआत देने और बड़ी पारी खेलने में सफल रहती है तो भारत का काम काफी हद तक आसान हो सकता है। और अगर रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो मंधाना को इंग्लैंड में खेलना बेहद रास आता है। इंग्लैंड में उन्होंने

0: तक खेली 19 पारियों में 139 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना इंग्लैंड में एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुकी हैं। तो रिकॉर्ड बखूबी बताते हैं कि स्टार बल्लेबाज के लिए इंग्लैंड की स्थितियां कितनी बेहतर होती है। रिकॉर्ड्स की बात हो और हरमनप्रीत कौर का नाम ना आए ये संभव नहीं है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची में भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर भी हैं। हरमनप्रीत का ये आखिरी विश्व कप भी माना जा रहा है, ऐसे में वे अपने प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगी। हरमनप्रीत ने इंग्लैंड में खेली 24 पारियों में अब तक 526 रन बनाए हैं। वहीं अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखने वाली शेफाली वर्मा इस T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं। शेफाली को इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने में आनंद आता है, जिसकी कहानी खुद उनके रिकॉर्ड्स बयां करते हैं। उन्होंने यहां पर खेले 19 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं। सूची में चौथा नाम दीप्ति शर्मा का है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा लंबे समय से अहम रोल अदा कर रही है। टीम को दीप्ति से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी। अगर मुख्य रूप से गेंदबाजी की बात की जाए तो रेणुका सिंह टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। स्टार तेज गेंदबाज का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड की धरती पर दमदार प्रदर्शन रहा है। इंग्लैंड में रेणुका ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 12 विकेट चटकाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान उनका इकोनॉमी सिर्फ 6.12 का रहा है, यानी किफायती के साथ साथ विकेट निकाल कर देने वाली खिलाड़ी। तो इन मजबूत खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस विश्व कप में भारत के लिए बड़ा रोल निभाते हुए नजर आएंगी और इंग्लैंड की धरती पर युवा और अनुभव भी खिलाड़ियों का तालमेल लेकर उतर रही है, टीम की खिताब जीतने की उम्मीदों को और मजबूत करेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अब समय हो रहा है श्रोताओं आपसे अनुमति लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमारे ईमेल sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगान

0: अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध

0: पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.in

0: bcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कम्प्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu.